0: यो का ट्रेडिशनल मैंने कह बिल्मा का ये कि मैं एवरीडे 5 AM का 6 PM चिनाले योलंग रेडियो
1: यो योलंग रेडियो तो मैं ना तब तो कहाँ मैं बिचन बिरयोंग योलंग मला

यो का ट्रेडिशनल मैंने कहे बिल मगाई डेक के में एवरीडे 5 AM का 6 PM जिनाली ऑल रेडी होगा.